जेवड आप तेवड तेरी दात, जिन दिन कर कै कीती रात, खसम विसारह ते कम जात, नानक नावें बाज सनात।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबे बाज बेनती चौपाई।

जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करोरण काता। जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखे तो हवा मरे।

पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाइया हर हर कदे ना चेते ओ जम पकड़ चलाइया जिन हर नामा हर चेतिया

सो धन गुरु सा वास है हर दे सनेहा। हों वेख वेख गुरु विकसिया गुर सत गुर देहा। गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन

किनको मिलियो प्रभु नाश, कहीं कोट मांगे सत्संग, पार भ्रम तिल्ला का रंग, जिनको हुए आप सुप्रसन्न, नानक तेजन सदा तन तन, कहीं कोट खानी यर खंड, कहीं कोट कास

कंकार कहीं कोटकी ने भो पहात प्रवते हुए ब्रह्मा समात ताका अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रसोए कहीं कोट पार ब्रह्म के दास किन होवत आत्म प्रगास कहीं कोट तत के बेते सदा निहारे एक कोने त्रे कहीं कोट नाम रस पीव है अमर पै सत सद ही जीव है कहीं कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज सुमाव है अपने जन कौ सास सुमारे नानक हुए परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रवीक है दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहारण है जल थल महियल सोए अष्टपति करण क्राउन करने जो जो तिस पावे सोई हो किन में थाप थप नुहारा अंत नहीं किच पारा वारा हुक्मे तार दल रहा वे हुक्मे उपजे हुक्म समावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब में रिया समाई प्रभावे मानुकत पावे प्रभावे ता पात्र त्रावे प्रभावे विश्वास ते राखे प्रभावे ता हर गुण पाखे प्रभावे ता पति तुधार है आप करे अपन विचार है दुहा श्रिया का आप स्वामी खिले बिकसे अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि और ना आवे कौ मानते क्या हुए आवे ज्योतिष पावे सोई करावे इसके हाथ हुए ता सब किचले ज्योतिष पावे सोई करे आन

चार कुंट फिर आवे कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले किन में नीच ईट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जा का दृष्ट कछु न आवे तिस तत्काल दह दिस प्रगटावे जा कहो अपने करे बख्शीस ता का लेखा ना गने जगदीश जियो पण सब तिसकी रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनत आप बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ कर्ण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो ज्योतिष पावे सोई फुनतियो कबू ऊंच नीच में बसे कबू सोग हर खड़ंग हसे कबू निंद चिन्ह व्यवहार कबू ओ बकास प्याल कबू बेता ब्रह्म विचार नान काप मिला उनहार कबू नृत्य करे भो पात कबू सोए रह दिन रात कबू महाक्रोध विकराल कबू सर्व की होत रवाल कबू होए बह बड़ राजा कबू पे खारी नीच का साजा कबू अब कीर्त में आवे कबू पला पला कहावे जो प्रभु राखे ही रहे गुरु प्रसाद नानक सच कहे कहूं होए पंडित करे वख्यान कहूं मोन तारी लावे ध्यान कहूं तट तीर्थ स्नान कहूं सिद्ध साधिक मुख ज्ञान कहूं कीट हस्त तंग हुए जिया अनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावे जो प्रभावे तिवन चावे जो तिस पावे सोई होए नानक दूजा वरना कोए कहूं साथ संगति उपावे उस स्थान ते बोर ना गावे अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रतेक रंग सदा वसे पार ब्रह्म कै संग ज्यो जल में जल आए कटाना त्यो ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सद कुर्बान श्लोक सुखी बसे मस्कीनिया।

तीत तिजन आवे हर प्रचीत भगत भगत सुनिए त्यो लोए जाके हृदय को होए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सतमुख हैत साची दृष्ट साचा आकार सच वर्तय साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच माता श्लोक रूप ना रेख ना रंग किच त्रिगुण ते प्रभ भिन्न किसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभु में राख मानुक की तू प्रीति त्याग तिसते प्रय नाहि किच कोई सर्व निरंतरे को सोए आपे बीना आपे दाना गहिर गंभीर गहिर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरणी पाओ नानक ते मन अनुराग मनसा पूर्ण सुना जोग जो कृपाया सोई होग हरन परंजा का नेत्र फोर जिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सदजा कह सर्व थोक सुनिए है करता कह राज में राज जोग में जोगी तप में तपी सर्गस्त में होगी त्याय त्याय भगत सु पाया नानक तिस पुरु का किन अंत न पाया जाकी लीला कीमत ना है सगल देव हारे उगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल प्रोई अपने सूत सगल प्रोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से देव गुण में जाको प्रमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना फिक्र है करंग नाना विकिरण विस्तार प्रभु नासी एक अंकार नाना चलित करे खिन माहे पूर रहे पूर्ण सब उठाए नाना विद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगलाकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के समुद्रे सुन सर्वन कर कृपा जिस आपने नाम लाए नाम चौथे पद में सोजन गत पाए रूप सत्या का सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की वाणी सत पुरुष सब माहि समाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब पली सत नाम प्रभु का सुदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत वचन साधु उपदेश सत ते जन जित सत ते जन जाकर दे प्रवेश सत निरत बुझे जे कोए नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करने हार अवरना बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष भावे सोर दिया विस्मन विस्म पे विस्मात जिन बुझे तिसाया स्वाद प्रभु कह रंग राज जिन रहे गुर कह वचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार।

गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुरु प्रसाद नानक फल पावे। श्लोक आदि सच जुगादि सच है पे सच, नानक ओसी पे सच। अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्हार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत विखनहार, नाम सत सत्यावनहार। आप सत सत सतधारी, आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभ बक्ता, सुरत सत सत जस सुनता, पूजनहार कौ सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जिन मान्या, करन करावन तिन मूल पछानिया, जा कर हृदय विश्वास प्रभु आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पै ते निर्भउ होए बसाना, जिसते उपजत समय समाना, बस्त माहे ले बस्त गडाई, ताको पिन ना कहना जाई, बुझ है बुझनहार विवेक, नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जानने संग, प्रभु का

अपने जन का पर्दा ढक है, अपने सेवक की सर पर राख है, अपने दास का उदय बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आफत राख है ताकि गतवित को ना लाख है, प्रभु के सेवक का को ना पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक तह दिस प्रगटाया, निकी कीरी महकल राख है, पसम करे लश्कर कोट लाख है, इसका सास ना काट ताको राख देकर हाथ, मानस जतन कर वो पहात, इसके कर्तव्य थे जात, मारे ना राख है वरना कोई, सर्व जिया का राखा सोए,

रंग, नाम सुकल नाम का संग, नाम रस जो जन तृप्तानी, मन तन नामे नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कह सदकाम। बोलो जस जेबा दिन रात, प्रभु अपने जन की नीदात, करे भगत आत्म कह चाये, प्रभु अपने सिओ रह समाये, जो होवा होत सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पछाने, इसकी महिमा कौन बखानो, किसका गुण कहे एक न जानो, आठ पहर प्रभु से हजू

ता इसकी शरण सर्व सुख पावे, इसके दर सब पाप मिटावे। और श्यान सगली छाट तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान ना कोई तेरा, नानक तिस जन के पूजो सुध पैरा। श्लोक सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाऊ, तिसके संग सिख उदरे, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की कृपा पाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुर्मत मल हिराए, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै। सतगुर सिख कौ नाम तन दे, गुर का सिख उठ पागी है। सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख कौ जी नाल सुमारै। गुर कै गृह से उकजूर है, गुर की आज्ञा मन में सह। आपस कौ कर कचना जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे। मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्य रास। सेवा करत हुए नेकामी, तिसका होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस विश्वे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै। सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर को बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म है जन, जन्म है पार ब्रह्म, एक कहे आपने कुछ परम। सहस्यांत ले आना जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाइये। सफल दर्शन पेकत पुनीत, पर सत चरणगत निर्मल रीत। पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दृघ गवे। सुनकर वचन करन लाघाने, मन संतो का तुम पतिया ने। पूरा गुर अखियो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट देख है हुए संत। कुण बेअंत कीमत नहीं पाए, अमृत दृष्ट देख है हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए। जे वाए कुछ तत् अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक। कहूं बोलना पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभु निर्वाणी। मेरा हार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने ना पाई। अनिक भगत मंदन नित करहे, चरण कमल हृदय स्मरहे। सदबलहारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने। एहो रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जा कै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया तै संग ना लेप, मन में रखे हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परम मोह दुख तह ते नासे। तब तुम्हारे ठाण वर्ताई, अंध पया दुख ना ठीक पाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेशे। पहुंचू का निरपह हुए बसे। सगल व्याध मन तेख है नसे, जिसका साथ इन कृपा तारी। साथ संग जपना मुरारी, तित पाई चूके ब्रह्म गवन। सुन नानक हर हर जसरवन, निर्गुण आप सरगुण पी ओही। कला तहार जिन सगली मोही, अपने चरित प्रभु आप बनाए। अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा ना ही कोए। सर्व निरंतर एको सोए, पोत पोत रविया रूप रंग। पय प्रकाश साध कै संग, रच रचना अपनी कलकारी। अनक बार नानक बलहारी। स्लोक सात ना चाले बिन भजन,

संत जना मिलकर हो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर उपाव सबमीत विसार हो, चरण कमल रिद में उड़तार हो, कर्ण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत, इहो तन संच हो भो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे, जिस तन को चार फुट उठतावे सो तन हर सेवा ते पावे, जिस सुख को नितमा छह मीत सो सुख साधु संग प्रीत, जिस शोभा को कह पली करनी सा शोभा पजर की सलनी, अनुकुपावी रोग न जाए रोग मिटाया रोग कदलाए, सर्व निधान में हर नाम निधान, जप नानक दर्घ प्रमाण, मन प्रबोध हर कहनाए, दह दिस्ताव तवा बैठाए, ताको विघ्न ना लागे कोए, जाके हृदय से हर सोए, कल ताती ठांडा हरनाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पौविन से पूर्ण हुए आस, भगत पाए आत्म प्रगास, तित कर जाए बसे अविनाशी, कौ नानक काटी जम फांसी, तत विचार कह जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवागमन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, यूं रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनिक पावना छुटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत कर हो मन लाए, मन बन चत नानक पल पाए, संगना चारस्ती रहता ना, तुम क्या लपटा वह मूर्ख मना, सुत मीत कुटमर बनता, इनते कहो तुम कौन सनाता, राज रंग माया विस्तार, राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कौन छुटकार, असस्ती रत सवारी, झूठा डंप छूट पासारी, जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना, नाम विसार नानक पुछताना, गुर की मत तू ले ही आने, भगत बिना बौडू बेस्याने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राख हो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे, आप जप हो अवरा नाम जपाहो, सुनत कहत रहत गत पाहो, सार पूत सत हर को नाओ, सह शुभाय नानक गुण गाओ, गुण गावत तेरी उतर समैल, विन्स जाए हो मैं विख फैल, ओहे अचिंत बसे सुखनाल, सास गिरास हर नाम समाल, चार श्याम सगली मना, सात संग पावे सच धना, हर कुंजी संत करो व्यवहार, यहाँ सुदर गय जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कौ नानक जाके मस्तक लेख, एको जप एको साला है, एक सिमर एको मन गाहे, एक अस्के गुण गाओ अनंत, मंत्र जाप एक भगवंत, एको एक एक हर आप, पूर्ण पूर रहो प्रभु आप, अनेक विस्तार एक ते पहे, एक राध प्राचित गए, मन तन अंतर एक प्रवराता, गुरु प्रसाद नानक की जाता श्लोक, फिरत फिरत प्रभु आया, प्रयात तो सुनाए, नानक की प्रभु विनती, अपनी भक्ति लाए स्पदी, जाचक दिन जाचक प्रवदान, कर कृपा देहो हर नाम, साध जना की मांगो तूर, पार ब्रह्मेश्वर दापूर, सदा सदा प्रभु के गुण गाओ, सास सास प्रभु तुम्हें त्याओ,

पूर्ण पुरख नहीं डोला ने सुपर परे प्रेम रसरंग उपजे चाओ साध के संग परे सन्मान सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग बड़ भागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभु होए दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन मरण दू भ्रम गया इस पुनी श्रद्धा सब पूरी दब रहा सत्संग अजूरी इसका साथ लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों विसरा जे काल ना पाने सो क्यों

आखे प्रसाद कोविल लाल आखे सो क्यों मिश्रा जी व्यक्ति काड है जन्म जन्म का टूटा गांड है और पूरे तथे बुझाया प्रभु अपना नानक जनती आया साजन संत करो ये काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुपाव आप जपो हरे नाम जपाव भगत पाए तरिये संसार इन भक्ति तन हो सी छार भगत पाए तरिये संसार बिन भक्ति तन हो सी छार सर्व कल्याण सुख निदनाम मूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रचाओ मन तन अंतर ही सुहाओ नेत्रो पेक दर सुख होए मन विकसे साचरंत होए भगत जना के मन तन रंग मिला को पावे संग एक वर्ष दीजे करमया गुरु प्रसाद नाम जप लिया ताकि उपमा कही ना जाए नानक रहा सब समाए प्रभु बख्शंद दीन दयाल भगत पिछल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त प्रतपाल आद पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जो पैसो है पुनीत भगत पै लावे मनहित हम निर्गुण यार नीच जान नानक तुमरी सन पुरुष भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोह पाए एक निमुख हर के गुण गाए अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई वो भोजन का प्रसंगीत रसना जगती हर हर नीत पली सोकरणी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभु देहो निवास सर्व सुख नान प्रगास लोक सर्वगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आपन किया नानका आपे ही फिर जा अष्टपदि जब कार्य कछना दृष्टिता पापुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब वैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चैन न जाप्त तब हर सोग कहो किसे व्याप्त जब आपन वाप आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किसोत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक कन्हे हार ना दूजा जब होवत प्रभु केवल तनी तब मन मुक्त कहो किस कहो गनी जब जब एक है हर गम पार तब नरक स्वरूप कहो कौन अवतार जब निर्गुण तुर से सुभाए तब शीर्षकत कहो कित छाए जब आपे आप अपनी ज्योत तर है तब कौन निडर कौन कत डर है आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुखा पनवासन तय जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता पुरुष होए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रवे का तब चेत्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे आपन वाप आप ही अचर जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा जय निर्मल पोरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल चित्र लगत कहो कीस क्या ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसै को कौन तृप्तावे कर्ण करावन करने हार नानक करते काना सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कौन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कला पै प्रवीण वेद कते तह वेद कते कहा को चीन जब अपन आप आप उतार है तो सगन अपसगन कहाँ विचार है जय अपन ऊंचा अपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा विस्मन विस्म रहे विस्मात नानक अपनी गत जन हो आप जय छल छेद भेद समाया वहाँ किसे व्याप्त माया आपस को आप है आदेश ते गुण का ना ही प्रवेश जय एक कहे एक एक भगवंता तह कौन चिंत किस लागे चिंता जय आपन आप आप तियारा तह कौन कतह कौन सुनने हारा भो में तूस ते ऊंचा नानक आपस को आप है पहुंचा जय आप पंचकार ते गुण में किनो विस्तार पापुन तह पही कहावत को नर्क को सुर्ग बंचावत आल जाल माया जंजाल ओम मैं मोह परम पै पहार परम पै पहार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की अवख्यान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोच चेतो नानक एक है जय अवगित भगत तहया जय श्रेय पासार संत प्रताप दूहू पाख का आप है तनी उनकी शोभा उन्हू बनी आप है को तक करे नंद चोज आप है रस भोग निर्जोग जिस पावे तिस आपन नाय लावे जिस पावे तिस खेल खिलावे
ਬਿਸਮਰ ਥਾਗਨਤ ਤੋਲੇ ਜੋ ਬੁਲਾਓ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਸਲੋਕ ਜੀ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਤਨਹਾਰ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਉਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਪ ਕਥਿਆ ਸੁਣੇ ਹਾਰ ਆਪ ਹੈ ਏਕ ਆਪ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾ ਸਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਆਪ ਨੇ ਪਾਣੈ ਲੈ ਸਮਾਏ ਤੁਮ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹੋਏ ਆਪਨ ਸੂਤ ਸਭ ਜਗਤ ਪਰੋਏ ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸਤਨਾਮ ਸੁਈ ਜਨ ਪਾਏ ਸੋ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਤਤਕਾ ਬੇਤਾ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਕਾ ਜੇਤਾ ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਵਤਾ ਕੇ ਹਾਥ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ਜਿਸ ਰਾਖੇ ਤਿਸ ਕੋ ਨਾ ਮਾਰੇ ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਤਿਸ ਤਾ ਜਬਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਏ ਸਭ ਸ੍ਰੀ ਏਕ ਨਿੰਜਨ ਰਾਏ ਜੀ ਕੀ ਜੁਗਤ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਹਾਥ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨੋ ਸਾਥ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੇ ਦਿਆਲ ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ ਜਾਣੇ ਆਪ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਹੇ ਵਿਆਪ ਪ੍ਰਤਪਾਲਿਆ ਜੀਅਨ ਬੋਪਾਤ ਜੋ ਜੋ ਰਚਿਓ ਸੋ ਤਿਸੇ ਤਿਹਾਤ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਲਈ ਮਿਲਾਏ ਭਗਤ ਕਰਿਆਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਹਰ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਜਨ ਲਾਗਾ ਹਰੇ ਕਹਿਣਾਏ ਇਸ ਕੀ ਆਸ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਏ ਸੇਵਕ ਕਉ ਸੇਵਾ ਬਨਵਾਈ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮਪਦ ਪਾਈ ਇਸ ਤੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਪਏ ਨਿਰਵੈਰ ਅਨਦਿਨ ਪੂਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾ ਪਹਿ ਮੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕਰੋ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਕਾ ਕਰੋ ਉਧਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰ ਕੇ

सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन बिसरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

विसर ना जाई, तीरथ नावा जे तिस पावा, बिन पाने के नाय करी, जेते सिरट पाए वेखा, बिन कर्मा के मिले लई, मत विच रतन जवार माणक, जे गुर के सिख सुनी, गुरा एक देव जाए, सब ना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा, होर दसुनी होए, नवा खंडा भी जानिए, नाल चले सब कोए, चंगा नाव रखाए कै, जस की रत जग ले, जे तिसन दर न आवे, ता वाद ना पूछे के, कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोस्त रे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंते आ गुण दे, तेहा कोई न सजई, जे तिस गुण कोई करे, सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनै तरत वल आकाश।

न जाए। जे को कह पीछे पछताए, कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बहकरण विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत होए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन के सुध, मन्ने मोह चोटा न खाए, मन्ने जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पद सी प्रगट जाए, मन्ने मगना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने पावे मोख द्वार, मन्ने परवार ऐसा तार, मन्ने तरे तारे गुर सिख, मन्ने नानक पवे न पिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच परवान।

नाहे सुमार, तोल तरम दया का पूत, संतोख थाप रखे आजिन सूत, जेको बुझे हुए सचियार, तहले ऊपर के तापार, तरती होर परे होर तिस्ते पार तले कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया उड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए, केता तान साले रूप, केती दात जाने कोल कूत, किता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारे न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मुपक सार, असंख मौन लिवलाय तार, कुदरत

अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड़ हत्या कमाहे असंख पापे पाप कर जाहे असंख कुड़ियार कुड़े फिराहे।

न जावे एक बार, जो तुद पावे ऐसा भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। भरिए हथ पैर तन देहे, पानी धोते उतरस के, मूत पलीती कपड़ होए, देसा बुण लइए ओ तोए। भरिए मत पापा कै संग, ओ तो पै नावे कै रंग, पुन्नी पापी।

नदिया अतः वहा पवह समुदना जान यह समुद सहा सुलतान गिरहा से तेमाल तन कीड़े तुलना होनी जे तिस मनोना विसरह

साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए। जेवड आप जाने आप, नानक नदरे करमी दात, बहुता करम लिखिया ना जाए।

देश आद अनिल अनाद अनाहत जग जग एको वेस एक दो जीवो लख हो वै लख वीस लख लख गेड़ा आखिय है एक नाम जगदीस एतरा है पद पौड़िया चढ़िया होए अकेस सुन गल्ला आकाश की केटा आई रेस नानक नदरी पाई है।

खंड में है ज्ञान प्रचंड, तीर्थ है नाद विनोद कोड आनंद। शर्म खंड की बाणी रूप, तीर्थ है घड़त घड़िए बहुत अनूप। ता क्या गला कथिया ना जाहे, जे को कहे

है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, पुजंग प्रयात छंद। नमो सर्वमान्य समस्ते निदाने, नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी नाते नृसिंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चांद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी नामे समस्ती स्वरूपे प्रपंगी परमाते, समस्ती विभूते कलंक बिना ने कलंकी स्वरूपे, नमो राजराज विसृंग परम रूपे, नमो जोग जोग विसृंग परम सिद्धे, नमो राजराज विसृंग परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता भेखिया परमिया भोगिया भुगते, नमो जोग जोग विसृंग परम जुगते, नमो नित नारायण करूर कर्मे, नमो प्रेत देवे सुधर्मे, नमो रोगर्ता, नमो राग रूपे, नमो साहसाहंग, नमो पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमो स्तंग स्नाने, नमो मंत्र मंत्र, नमो जंत्र जंत्र, नमो इष्टिष्टे, नमो तंत्र तंत्र, सदा सदानंद सर्वं प्रणाशी अनूपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता अधोर दर्द अगंग ओघर्ता परम परम परमेश्वर प्रोच पालंग सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग अचेदी अपेदी नाम काम समस्त उपराजी समस्त ताम तेरा जो चाचरी छंद। जले हैं तले हैं पीते हैं पे हैं प्रभु हैं जु हैं देश हैं पीस हैं पूजम प्रयात छंद। अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमान्य समस्ते निदाने, नमस्तंग नृणाते, नमस्तंग परमाते, नमस्तंग गंजे, नमस्तंग पंजे, नमस्तंग काले, नमस्तंग पाले, नमो सर्व देशे, नमो सर्व पेशे, नमो राजराज, नमो साज साजे, नमो शाह शाह, नमो माह माह, नमो प्रीत प्रीते, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोग रोके, नमो शोक शोके, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतंग, नमो सर्व पीतंग, नमो सर्व ज्ञानंग, नमो परम तानंग, नमो सर्व मंत्रंग, नमो सर्व जंत्रंग, नमो सर्व दृश्यंग, नमो सर्व कृष्णंग, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवंग, नमो बीज बीजे कीजे पीजे समस्तंग प्रसिद्धे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा ऋतसिंग निवासी चरपट छंद तो प्रसाद। अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकल धर्म अलक कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देव सर्वंग पेहुंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल छंद तो प्रसाद। आद रूपनाद मूर्त जोन पुर कपार सर्वमान त्रिमान देव पेहो आदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपुन काल जात्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रसाल। नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख ना राग जात्र तत्र दिशा विशा हुए फैल्यो अनुराग। नाम काम विहीन पेखत ताम हूँ नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानता ही एक मूर्त अनेक दर्शन की रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक देव पे होना जान ही जय वेद और कतेव रूप रंगना जात पात सो जान ही के जय तात्मात्मा जात जाकर जन्म मन विहीन चक्र वक्र फिर चात्र चक मान ही प्रतीन लोक चौदह के विखय जग जाप ही जय जाप वा देवनार्द मूर्त था प्यो सदै जे था प्यो सदै जे था परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरक पार सर्व विश्व रचियो संभव गुणन पंजनहार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख अधीश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपीस अंगराग ना रंग जाके जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्तदायक काम आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन वाद रूप असूत अंगहीन अपंग नातम एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्वगंता सर्वहंता सर्व तेन पीख सर्व

प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार आसन पंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निष्दिन अनास राजान बाहो सहन साहु राजन राजपान पहान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान कालन पूत अंग आपा पंगत मित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपैन काम मत दुत प्रचंड मित गत आखंड आलिश्य कर्म आदिश्य धर्म सर्वा प्रणाढ़ अंडड बाढ़ चाचरी छल तो प्रसाद गोविंदे मुकुंदे उदारे पारे हरियं करियं निर्नामे कामे पुजं प्रयात छंद चातर चक्र करता चातर चक्र हरता चातर चक्र दाने चातर चक्र जाने चातर चक्र वर्ती चातर चक्र परती चातर चक्र पाले चातर चक्र काले चातर चक्र वासे चातर चक्र वासे चातर चक्र माने चातर चक्र दाने चाचरी छंद ना सत्र ना मित्र ना परमंग ना पित्र ना कर्मंग ना काय जन्म जाय ना चित्र ना मित्र परे है पवित्र है प्रतिशय दिशय दृशय कृषय भगवती छंद तो प्रसाद कथ ते क्या चीज देशय क्या पिज बेसय क्या गंज कर्म है क्या पंच परम है क्या पिज लोक है क्या आदित्य सुख है के उत बर्ण है के विभूत कर्ण है के राजंग प्रभा है के त्रमुख तुझा है के अशोक वर्ण है के सर्वापर्ण है के जगतन कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद देव है के आप अपेव है के चित्रंग विहीन है के कैधीन है के रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के फुल गुना है के साहन साह है के कारण पुनिंद है के रोजी देहिंद है के राजक रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के प्रमुख फहीम है के अकाल अल्लाह है के साहिब कलाम है के हुस्नुल वजू है तमाम रुजू है मैं सुर सलाम है सलीकत मुदाम है गनीमत सिकस्त है गरीब परस्त है।

प्रकाश है, प्रकाश है, नित्यंत है, सुनिंत है, लिख है, दिख है, लेख है, पीख है, अडा है, गा है, संभ है, गम है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, जात है, अजाद है, चल प्रच्छंद तो प्रसाद, सर्वघंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वज्ञाता सर्वंगर्ता सर्वंकर्ता सर्वं प्राणंग सर्वं त्राणंग सर्वं कर्मंग सर्वं तर्मंग सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता और सावल छंद तो प्रसाद। नमो नरक नासे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म।

परमेश्वर सलाह में समस्त कलाम है कि साहब दिमाग है कि सुन चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी देहंद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि उसन जमाल है गनीमुल के राज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है इरासुल फिकन है कलंकुल प्रनास है समस्तुल निवास है अगुंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब करा है कि नरकुल प्रनास है बहस्तुल निवास है कि सरबुल गवन है हमेशुल रवन है तमाम तमीज है समस्तुल अजीज है।

हैं के चलन प्रकाश है के अमित सुभाष है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो फसा है के आत्म प्रभा है के चलंग अनंग है के अमितो अपंग है मदपार छंद तो प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम वर वर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव नास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनचिज अंग आसन अपंग उपमा पार गतमित उदार जल थल अमंड दिस्विस अपंड जल थल महंत दिस्विस बेअंत अनुभव नास तीर्थ तार तुराश आजान बाहु एक सदाहु ओंकाराद कतमिय नाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कार्य कार्य प्रणाम चित्रन नाम अंच जगात आज जिना बात अंच जगात अनरंज बात अनटुट पंडार अनठ अपार आठ तरुण अत कीट कर्म अन वरण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद तो प्रसाद करणालय है हर काले है कलकंडन है मै मंडन है जगतीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वभूवारण है तीर्थ के तरण है जग के करण है मन माने है जग जाने हैं सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपाश है सर्वनाश्य है करुणा करे विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतीश्वर है ब्रह्मंडस है कलकंडस है परते पर है करुणा कर है आ जपा जपै तपा तपै कृता कृत्य अमृता अमृत अमृता अमृत करुणा कृत्य कृता कृत्य धरणी तीर्थ है हम तीसरे हैं परमेश्वर है कृता कृत्य अमृत अमृत है जबा कृत्य अमृत अमृत निर्णायक है खलकायक है विश्वंबर है करुणालय है निर्पनायक है सर्वपायक है पोपंजन है अर्गंजन है रितापन है जपजापन है अकलंकृत है सर्वा कृत्य कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रयात छंद

अजय अलय अभय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अना

छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगुंजल अनामे समस्तुल निवासे निरकाम विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सुधर्म विपूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विपूते अजायब गनीमे हरियं करियं करीमल रहीमे चात्र चक्रवर्ती चात्र चक्र भुगते सुंभो सुभं सर्वदा।

आलंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग विपूते ओंकार। श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवे तव प्रसाद सवैये ओंकार। सतगुर प्रसाद श्रावक सुध समूह सिद्धांत के देख रियो कर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के। सारे ही देश को देख रहे हो मातृ को उना देख प्राणपति के। श्री पद को उना देख प्राणपति के। श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति विनय कृति के। माते मतंग चरे जर संग अनुपतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे। पारी पजान के पूप पली बेध न्यावत शीस ना जात बिचारे। ते पै तो कहाँ पहे पूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे। जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नंगारे। गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे। पोत पवित पवान के पोपत कौन गने नहीं जात बिचारे। श्रीपत श्री भगवान भजे बिनु अंत कौंत के धाम सिधारे। तीर्थ नाम दया दिन दान सुसंजम नेम अनेक विशेख है। वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान समान के पेख है। पौन हार जति जतार सभ सो विचार हजार को देख है। श्री भगवान पजे बिन पूपत एक तिबन एक ना लेखे। सुध सुन दुबह सो सा सुना दुर जान दलेंगे। पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख लेना हलेंगे। तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे। श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे। वीर पार बड़े बड़े आर विचार है सार की तार पछैया।

तरियो सिर काहू लै लिंग गिरे लटकायो काहू नकियो रवाची दिशा में काहू पछा को शीश निवायो को भूतान को पूजत है पशु को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सभी जग श्री भगवान को भेद ना पायो कूर क्रिया और जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो पातशाही दसवीं कवियो बाचू बेनती चौपई हमरी करो।

प्यासा तुम्हें छाड़ को यवना त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तार्य है चौन चौन सत्र हमारे मार्य है।

सकल प्रजा जिनु आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोहबत कियो, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत।

अंड जे रसे तजकीनी उपज खान बहु रच दीनी कहू फूल राजा हो बैठा कहू सिमट पे शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव आद जुगाद स्वरूप स्वंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जीते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे हर्ष तो जो तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हव मरे पुरख जवन पाग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके कार निकट नह है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट ने तत्काला कृपा दिष्ट तन जाहि निहरे हो ताके ताप तनक मोहर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा

दिन सचत जया कूड़े लागे। तिनी जन्म जुए हारिया जीव निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जीव निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी। कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी कटिया भले सेवन जारे। कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु से ती सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले गुरु के चरण हृदय ध्याए अंतर आत्मा समाले। आप छठ सदा रह प्रणय गुरु बिना वरना जाने कोई। कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए जे को गुरुदेवे मुख होवे बिन सतगुरु मुक्त ना पावे पावे मुक्त ना होर थे कोई पूछो विवेकिया जाए। अनेक जूनी भरम आवे बिन सतगुरु मुक्त ना पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त ना पाए आहो सिख सतगुरु के प्यारे हो गाहो सची बाणी बाणी ता गाहो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिन कौ नदर कर्म हो वै हृदय तिना समाणी पीवो अमृत सदा रहो रंग पियो सारंग पाणी। कह नानक सदा गाहो ए सची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आंख वखाणी। हर हर नित करे रसना कहया कछुना जानी चित जिन काहिर लया माया बोलन पैर वाणी। कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुरु का शब्द रतन है हीरे चित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हासमाओ। शब्द सेती मन मिलिया चलाया भाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव सकता उपाय कह करता आपे हुकुमरताए आप वेखै गुरमुख से बुझाए तोड़े बंधन होवे मुख शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे इक सिम लिव लाए। कह नानक आप करता आपे हुकुम बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार ना जानी। तत्तै सार ना जानी गुरु बाजो तत्तै सार ना जानी तिही गुणी संसार भ्रम सुता सुतिया रहण विहानी। गुरु कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी। कह नानक सो तत् पाए जिसनो अन दिन हर लिव लागे जागत रहण विहानी। माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनो क्यों विसारी है वरदाता। जे अगन में आहार पहुंचावे उसनो क्यों कोहे न सकी जिसनो आपनी लिव लावे आपनी लिवा पेलाए गुरमुख सदा संभाली है। कह नानक वरदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उदर में है तैसी बाहर माया। माया अगन सब एको जेही करता है खेल रचाया जातिस पाणा ता जम्मिया परवार भला पाया।

सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक।

0: तथ्य तुदियाकन क्रूर तथ्य तमतां तथ्य समझोर सच्ची तेरे चित्ते सच्ची साला सच्ची तेरे कुदर सच्चे पासा नानक सच्ची ध्यान सच्च जो मर्द मैं सो कच निकच महला पहला
1: उड़ी उड़ी आई जा बड़ा ना उड़ी उड़ी आई जा सच नहीं आओ।

साहब जी एक सौ सच वरताया, जिस तू देह तिस प्रह सच तक नी सच कमाया, सतगुरु ने सतराज कीर्ति सच वसाया, मूर्ख सच ने जानी।

सतनाम श्री वाहे गुरु जी। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराहे तेहा हाँ करी बखियान। बेसमार अथाह अगंत अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। वाहिगुरु जी आषाढ़ तपंदा तिस लग है, हर नाहो नजन्ना पास।

0: वाहेगुरु जी की फतेह। और सत्कार जो विशाल सिंह जी मारे बख्शिश कारण आप सब संगतान संगतान जी मुबारक हो। सब संगतान मारे बख्शिश कारण इस सारे महीने में शुभकामना बख्शिश कारण सत्संग जी आप मारे बख्शिश की आप संगत अमृत तो लैके मारी हाल जी पढ़ते हैं। पुत्र गुरबाणी आशा की वाद स्कूल कीर्तन श्रवण किए हैं। सत्संग जी अरदास परिवार मारे बख्शिश नाम श्रवण किए हैं। महीने का नाम श्रवण किया है। इस पाठ में गुरु साहब ने आप गुरु घर बख्शिश किया है। सत्संगत बेनती है कि जरूर हर रोज गुरु घर आया करो और मत्था टेक को अरदास करो। जिन्हें देर तक चाहो हमारे निकी योजना बैठ के सत्संग जी कथा की दरवाजा से आनंद मान सकते हो। सो आप संगत बेनती है सत्संग जी जो नाता चौथा डबल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है वो वास्ते संगत हर रोज बेनती करी दी है। मारे बख्शी की बेअंत परिवार ने अपना दृष्टांत सफल करते हैं। बेअंत माया गुरु घर पेटा की कंस्ट्रक्शन वास्ते वो बटवा गई हैं। सत्संग जिन्हें जिन्हें अभी तक माया पेटा नहीं की सारे ने बेनती है कि जरूर अपना बन का दृष्टांत कट के सफल करो और गुरु दिया जो इमारत बनियां हिस्सा पा के गुरु दी खुशियां प्राप्त करो। सो सत्संग जी आप संगत बेनती है कि जो सहज पाठ आप घर ही कर रहे हो इन्हों के भोग पैणगे 21 जून न किसी न कोई ये कोई लोड़ हो संबंध कायम करने की तो आप भाई रजिंदर सिंह का नंबर डायल करके उन्होंने तुम ये तो सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने नंबर है 408-712-4145। सो सत्संग जी आप संगत बेनती है कि 16 तो लैके 20 तरीक तक संगती रूप में सुखम साहब के पाठ हो रहे हैं गुरु घर साहब नौ जे 7:30 तो लैके 8:45 राज तक हर रोज होया करेंगे। सत्संग जी जून 18 नूं है शहीदी श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की उसनों आपसी सारे मिल के कैद कलाज मनाइए और गुरु महाराज बख्शिया दातों का असं जरूर धन्यवाद करिए। सत्संग जी आप संगत बेनती है कि गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का विआह पुरब सारी संगत मिल के मनाइए खास करके श्री शंकर दंगत वालों हर साल गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह के विआह पुरब बड़ी कैद कलाज मनाया जाता है। सो इस साल भी मनाया जाना है 26, 27 और 28 गुरु अर्जन देव जी का विआह पुरब श्री संगत संगत वालों आप संगत साल दिन पढ़ते गुरु दुशियां प्रत करो और भाई साहब तैयार ने और सहज पाठ आरंभ करने सू करिए। इस तो बाद स्पैशल तौर पर कीर्तन आरंभ हो रहे हैं 10 से लैके 11 तक। सो सारी संगत बेनती है कि सहज पाठ सरण करो उस तो बाद कीर्तन की हाजरियां पढ़ो अपने जीवन की कड़ी सफला करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी वडभागी हो जो गुरु चरणा की हाजरी भर रहे हो। आओ समा होया अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ दा। अज पावन अंग 416 तो श्री सहज पाठ अगे आपां प्रारंभ करने हन। प्यार सहित आप जी ने हाजरियां भरनिया हन जी। 416 अंग तो श्री सहज पाठ प्रारंभ हो रहे हैं।

मन में तप कर है नित तीर्थ वासा आप नची नह तामसी काहे भय उदासा एक बिंद जतन कर राख दे से जती कहावे बिन गुर शब्द न छूटही

जाको सच बुझावै अपना, सहजे नाम समानी आसा महला तीजा। सतगुर हमरा परम गवाया, हर नाम

अंतर लीना। ज्ञान अंजन मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन मन ही ना रहा। नाम देव सिमरन कर जाना, जग जीवन स्यो जियो समाना। नाम देव सिमरन कर जाना, जग जीवन स्यो जियो समाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सलोक महला नौवां। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। कहो नानक हर भज मना, जे विद जल को मीन। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। कहो नानक हर भज मना, जे विद जल को मीन। बिखियन स्यो काहे रचियो, निमख न होहे उदास। कहो नानक भज हर मना, परे न जम की फास। करना पो यो ही गयो, लियो जरा तन जीत। कहो नानक भज हर मना, औद जात है बिरद। पयो सूझे नहीं, काल पहुँचियो आन। कहो नानक नर बावरे, क्यों ना पजे भगवान। तन दारा संपत सगल, जिन अपनी करमान। इन मैं कछ संगी नहीं, नानक सच्ची जान। पतत उदाहरण पै हरन, हर अनाथ के नाथ। कहो नानक जानिए सदा वस्त तुम साथ। तन तन जेतो को जितियो, कास्यो नेहो ना। कहो नानक नर बावरे, अब क्यों डोलत दीन। तन तन संपे सुख दियो, अर्जेनी के ताम। कहो नानक सुन रे मना, सिमरत काहे। सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय। कहो नानक सुन रे मना, गत होय। जे सिमरत गत पाइये, ते भज रे तै मीत। कहो नानक सुन रे मना, कटत है नीत। पांच तत् को तन रचियो, जानो चतुर सुजान। जेते उपजियो नानका, लीन ताहे मेहमान। घट घट में हर जूब, सह संतन कहो पुकार। कहो नानक ते पज मना, पाओ निध उतरे पार। सुख दुख जे पर सह नहीं, सुख दुख जे पर सह नहीं। लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना। सो मूरत उस्तत निंदया नाहे, जेहे कंचन लोह समान। कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे ते। हरक सोग जाके नहीं, बैरी मीत समान। कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे ते। पै काहू को देत नह, न पह मानत आन। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी जे विख्या सगली तजी लियो, पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, ते नरमा थे भाग। जे माया ममता तजी, सब ते पयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, निवास जे प्राणी हो मैं तजी, करता राम पछान। कहो नानक वह मुकुत नर, ए मन साची। पैनासन दुर्मत हरन, कल मैं हर को नाम। निस दिन जो नानक पजे, सफल होहे तय। जे बागुन गोविंद पजो, करन सुनो हर नाद। कहो नानक ताम जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अंकार। कहो नानक आपंतरे, औरन लेत उधार। ज्यो सुपना अर पेखना ऐसे, इन मैं कछ साचो नहीं। नानक बिन भगवान, निस दिन माया कारने। प्राणी डोलत नीत, कोटन मैं नानक को जे चीत। जैसे जलते बुदबुदा, उपजे बिन सैनीत। जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु न चेतई, मद माया के अंध। कहो नानक बिन हर भजन, परतता है जम फंद। जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की लेह। कहो नानक सुन रे मना, माया कारण ता वही, मूरख लोग जान। कहो नानक बिन हर भजन, बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन भजै, रूप राम तेह जान। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची। मन माया मैर फद रहयो, विसरयो गोविंद नाम। कहो नानक बिन हर भजन, जीवन कौने काम। प्राणी राम न चेतई, मद माया के। कहो नानक हर भजन बिन, परत ताहे जम फंद। सुख में बहु संगी पए,
कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास कहो नानक हर भज मना जतन बहुत मैं कर रहयो मिट्यो न मन को मान दुर्मत्स्यो नानक पदयो राख लहो भगवान बाल जवानी अर बिरद पुन तीन अवस्था जान कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सभी करणो हु तो सो ना कियो परयो लोभ कै पंद नानक समयो रम गयो अब क्यों रो मन माया में रम रहयो निकसत ना हिन मीत नानक मूरत चित्र ज्यो छाड़त ना हिन पीत नर चाहत कछ और औरे की और चितवत रहयो ठगोर नानक पासी गल परी जतन बहुत सुख के किए दुख को कहो नानक सुन रे मना हर पावे सो होए जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम कहो नानक मन सिमरते है पूरन होवे काम झूठे मान कहाँ करे सपने जो जान इनमें कछ तेरो नहीं गर्व करत है देह को बिनसे छिन में नीत जेह प्राणी हर जस कहो नानक ते जे कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान तेह नर हर अंतर नहीं एक भगत भगवान जे प्राणी कह ना है मन जैसे सुकर स्वान नानक मानो स्वामी को गृह जो सदा स्वान तजत नहीं नित नानक ए बिद हर भजो इक मन होय इक चित तीरथ व्रत अर दान कर मन में तरह गुमान नानक ने फल जात ज्यो कुंचर स्नान सिर कम पियो पग डग मगे नैन जोत ते हीन कहो नानक ए बिद पई तो न हरस निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे नानक तिर हर भगत है तेरा को जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे कह नानक थिर ना रह ज्यो बालू की पीत राम गयो रावण गयो जाको कहो नानक थिर कच नहीं सुपने ज्यो संसार चिंता ताकी कीजिए एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए जो उपजो सो बिनस है परो आज कह काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ दोहरा बल छुटके बंधन परे कछु न हो तू पाए नानक अब ओट हर गज ज्यो हो सहाय बल हो वा बंधन छुटे सब किच हो नानक सब किच तुमरे हाथ में तुम ही हो तु सहाय तज गए कौ न निभो साथ कहो नानक ए विपत में एक एक नाम रहो साधु रहो गुरु गोविंद कहो नानक ए जगत में राम नाम उर में गयो जा के सम नहीं कोए जे सिमरत संकट मिटे दरस तुहारो जे सिमरत संकट मिटे दरस तुहारो मुंदावनी महला पंजवां थाल विच तीन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो जेको खावे जेको पहुंचे तिसका होय उधारो एहे वस्तु तजी नह जाई नित नित रघुर तारो तम संसार चरण लगत रिये सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पंजवां तेरा कीता जा तो नाही मैनू जोग की तोई मैं निर्गुणारे को गुण नाही आपे तरस पयो तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक ना मिलता जीवा तन मन थी वह हरिया एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलापे आठों नंदन प्रथम राग पहरो वे कर ही पंच रागनी संग उचर ही प्रथमी पैरवी बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असले की पही बारी ए पैरो की पंचो नारी पंचम हरक दिशा सुनावे बंगा लम मद माधव गावे ललत बिलावल गावे अपनी अपनी पहात अष्टपुत्र पैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलापे संग्रागनी पांचो थापे गौंड करी हर देव गंधारी गंधारी इसी होती उचारी तनासरी ए पांचो गाई माल राग कौशक संगलाई मारू मस्त अंग में वारा परबल चंड कौशक उभारा खाओ खट औ पौर आनंद गाये अष्ट माल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचनार संग हर अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावी तेलंगी देव करी आई बसंती संदूरी संदूर सुहाई अर्स अहिरी लय पहर जा संग लाई पंचवार जा सुरमानंद अपास्कर आये चंद्र बिंब मंगलन सुहाये सरस बान औ आये विनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र में कह सवारी पुन आई दीपक की बारी कच्छेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल ओ रामा कमल कुसम चंपक के नामा गौरा औ
कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राघवै गावे पांचो संग बरंगन लावे बैरारी करनाटी तरी गौरी गावे आसावरी ते पाछे सिंधवी अलापी श्री राघ सिंह पांचो थापी सालू सागर सागरा सालू सारग सागरा और गौंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राखे गुंड कुंभ हमीर खष्टम मेघ राघवे गावे पांचो संग बरंगन लावे सोरठ गोण मलारी तुनी पुन गावे आसा गुनगुनी उच्चे सुर सोहो पुन कीनी मेघराग से पांचो चीनी बैरा तर गज तर के दारा जबली तर नट ओ जल तारा पुन गावे शंकर ओ श्यामा मेघराग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सब है पुत्र रागन के अठारह दस बीस मेघराग पुत्रन के नामा बैरा तर गज तर के दारा जबली तर नट ओ जल तारा पुन गावे शंकर ओ श्यामा मेघराग पुत्रन के नामा खष्ट रागुन गाए संग राग नीतीस सब है पुत्र रागन के अठारह दस बीस वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोले सोनिहा सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरुता पाया सहज सिद्धि मन वजियां वधाइयां राग रतन परिवार परियां शब्द गावन आईयां शब्द तगावो हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होवा सतगुरु में पाया ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही करते रह करता तेरे सब किच है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह साचा नाम मेरा आधार ओ साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु बिटो जेडिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतोष वत्रो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु बिटो जेडिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतोष वत्रो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु बिटो जिदिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतोष वत्रो प्यारो साच नाम मेरा आधारो वाजे पांच शब्द कर सपागे कर सपागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दिवस किते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे कह नानक तें सुख वातित कर अनहद वाजे अनंत सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुरु रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहतूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुरु रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहतूरे सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुई दाई दाया खेलें सगल जगत चंगियां बुरियां वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशकत काल नानक ते मुखजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मशकत काल नानक ते मुखजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा।

अपयाटु नंदन प्रथम राग पहरुवे करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम पहरवी बिलावली पुन्या की गावे बंगली पुण्य सलेखी की पहिवारी ये पहरों की पाचो नारी पंचम हरक